देवानंद कल्पना कार्तिक शीला रमणी जॉनी वॉकर यात अजून एक क्लब सॉन्ग होतं दिल से मिला के दिल प्यार प्यार कीजिए कोई सुहाना इकरार कीजिए.

न करो, दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा न करो, ओ जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्ला

एक दिन तुम्हारे दिल में भी एक आग उठेगी, तूफान उठेगा, मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम, सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला।

ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।

भगवान से बहुत उसकी आभारी हूँ कि ये जो मेरा सक्सेस है इसका मेरे ऊपर कोई बुरा असर नहीं हुआ। हो सकता था ना कि मेरा दिमाग बहुत खराब हो जाता, मैं अपने आप को बहुत समझती, पर मैं अपने आप को कुछ नहीं समझती। मैं ऐसा समझती हूँ कि जो भी हुआ उसने चाहा हुआ, जो कुछ भी हमें मिला है वो उसकी कृपा है। बस मैं हमेशा उसके शरण जाती हूँ। सुबह भी मैं प्रार्थना करती हूँ, रात को भी सोने से पहले प्रार्थना करके सोती हूँ।